जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु चरणों विच विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी अते सुभाग जोड़ी बीबी हरशीन कौर अते सरदार अमितोज सिंह सतगुरु साहब जी दे पावन पवित्र अस्थाना ते आनंद कार्य की जो मर्यादा है वो आरंभ होन लगी है, जिस विच सब तो पहला पल्ले दी रस्म अदा होवेगी, जिस विच लड़की दे पिता लड़के दा पल्ला लड़की नूं फड़ाउणगे अते भाई साहब पल्ले दा शब्द जिहड़ा है वह कीर्तन राही आप समूह संगतां नूं सरवण कराउणगे। बेनती है लड़की दे पिता जी नूं कि वो पल्ले दी रस्म अदा करन दी कृपालता करन जी।

जैसे सर सरिता सकल में समुंदर बड़ो, मेर में सुमेर बड़ो, जगत बखान है। बिरखन बिखै जैसे चंदन बिरख बड़ो, तातन में कंचन अत उत्तम कैमान है। पंछियन में हंस मृगराजन में शार्दूल, रागन में श्री राग पारस पखान है। ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गौर,

अहनि सुसहज सुपाय नरसना परसे आय गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसंदी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह

काम तेन हर हर गुण काम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय वसै, संत प्रताप दुत सब नसै। संत का संग बड़भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को। ए श्लोक। बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़सा त्रिसिमत वखियान। योग अभ्यास करम धर्म किरिया, सगल त्याग मन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दौन हों मैं बहु रतना। शरीर कटाए हों मैं कर राती, वत नेम करें बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तभी सर थीवै। अग्न माह होम तपरान, कनक सब है भरपूम दान। न्यौली कर्म करै बहो आसन, जैन मार्ग संयम यात साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी हों मैं मैल न जावै। हर के नाम सम सर कछ नाहै, नानक गुरमुख नाम जबत गत पाहै। मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियार रात, मन की मै न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू न बिखिया टरै। जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहा होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ ब्यापै, अनक जतन कर त्रिशन न त्रापै। पेखा नेका गन नहीं बुझै, कोट पाप दरगै नी सिजै। छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्यापै माया जाल। अवर कर तू सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तेल नहीं मानै। हर का नाम जब दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग हम मैं छोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरणी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मह पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस को जाओ जाने नीचा, सो गनियै सब ते उच्चा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घाट घट जीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सिरच साजना। सुख दुख जन समुद्र सटेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन कौ धन तेरो नाओ, निथावै कौ नाओ तेरा थाओ। निमाने कौ प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देवो दान। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गात मित जानो आपे, अपन संग आप प्रभ राते। तुमरी उस तुम ते होए, नानक अवरना जान सकोए। सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जब निर्मल कर्म। सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्यम मह उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी मह अमृत बानी, हर को जा सुनरसन बखानी। सगल थान ते ओहो उत्तम थान, नानक जेह कट वसै हर नाम। श्लोक।

साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी।

मन एक न चेतस मूड मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। नाहों जती सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरना,

कभियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करूं हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम काब हो, आप हाथ दै मोहि बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर

तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करिया रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन

काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताही हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो। आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मुँह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, घट घट के पट पट की जाना। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख कर तो कब हों, तुम मैं मिलत देहि तर सब हों। जेते बदन श्रेष्ट सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम।

जानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो हितेते तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा।

कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्यो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तु जितव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो, ताके ताप तनिक मैं हर हो। हृदय सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा।

दुष्ट दुख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई, अड़िल सुने गुंग जो जाही सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कहै, चौपाई संबत सत्रह है सहस पणिजय, अर्ध सहस पुन तीन कही जय, भाद्रव सुधि अष्टमी रवारा, तीर्थद्रव ग्रंथ सुधारा, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहै मत एक न मान्यो, सिमरित शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहै हम एक न जान्यो, श्री अस्पान कृपा।

दास गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सीती मन वजिया वधाईया राग रतन परवार प्रिया शब्द गावन आईया शब्दोता गाव हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस दे हे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दी वड़े आईया

कल कोर समुद्र में बुडत थे, कब हो मिट है नहीं रे पछताए। तत विचार जह मथुरा, जग तारन कौ अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जप्यो जिन अर्जुन देव

नानक सारंग का हो जाति तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध गर्भ परया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पनवड्डा हे। कर डंडौत पनवड्डा हे। रहाओ साकत हर साधना जानिया तेने अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चले चवै दुख पावै जम काल सहसर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पाप खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंड।

फतवंते प्रभ को सिमरन से पूर्व प्रधान प्रभ को सिमरन से सर्व के राजे प्रभ को सिमरन सदा विनाशी नानक जन की मगर वाला प्रभ को सिमरन तिन सत बलिहारी प्रभ को सिमरन से तू हवे प्रभ को सिमरन तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरन पसे हर नेरे नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ के सिमरन कबू न चूरे प्रभ के सिमरन सह समानी प्रभ के सिमरन कमल विगासन सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार नानक तिंजन सरनी पया हर सम निर्लक वेद उपाय

0: सुन समान नाम रसमाते
1: आठ पैजन हर हर जपे
0: हर का भगत प्रगटनी छपे
1: हर के भक्त मुक्त बहु करे
0: नानक जन संकेत तेतर
1: पार जते हर को नाम
0: नाम ते हर हर गुण गाम
1: सबते उत्तम हर की कथा
0: नाम सुनत दर्द दुखलता
1: नाम की महिमा संत रिदवसे
0: संत प्रताप दुख सब नसे
1: संत का संगवट पागी पाई।

0: मदगत पाए।
1: मन कामना तिरह दे छूटे,
0: गर्भ माना मानते हुए
1: सोच करे दिनस हर रात,
0: मन की मेहनत अंते जात,
1: इस देही को बो साथ ना करे,
0: मानते कबू न बिके अटरे,
1: जल तो वे बहुत दे अनित,
0: सुधा का उकाची पीत,
1: मन हर के नाम की महिमा ऊच,
0: नानक नाम उदरे पद बहुज,
1: बहुत स्यानप जम का पव्यापे,
0: अनक जतन का तृष्णा त्रापे,
1: एक अनेक अगर नहीं बूझे।

सुत प्राग मीत बनता संघ से सुखदाई पवन पाव कमला सगल समग्री संसात भसा तिसे त्याग अवर संरचना नानक आड़ ले प्रभापे।

0: प्रसाद सवारी
1: मानस प्रभु को बिना विसारी
0: जे प्रसाद बाग में लखतन
1: राख रोई प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठत

0: जा कटे,
1: संत के दुखन जपे में छूटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन अर्थ में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलिन,
1: संत के दुखन तो बाते ही,
0: संत के हते को रखे न कोई,
1: संत के दुखन काम नष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नहा सत्संग नित की करे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संत के दुखन काज मिल होए,
0: संतन के दुखन सरब जोन पाए,
1: संत के दुखन ते बिंद करवाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब को शले,
0: संत के दुखन तेज सब जाए,
1: संत के दुखन नीच जाए,
0: संत दोखी का थाओ को नाही,
1: नाम संत पावे ता ओही भी कर पाए,
0: संत का निंदक महा अतताई,
1: संत का निंदक के कर ना पाए,
0: संत का निंदक महा हत्यारा,
1: संत का निंदक प्रवेश मारा,
0: संत का निंदक राज देही,
1: संत का निंदक प्यार देना,
0: संत के निंदक को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सदा बिजोग,
0: संत की निंदा दोख में दोख,
1: संत का निंदक उसका भी हुए भोग,
0: संत का दोखी सदा अपवित,
1: संत का दोखी से का नहीं,
0: संत के दोखी को डांग लागे,
1: संत के दोखी को सब त्यागे,
0: संत का दोखी महा अहंकारी,
1: संत का दोखी सदा बेकारी,
0: संत का दोखी जन न मरे,
1: संत की गुना सुनते डरे,
0: संत के दोखी को ना ही ठाओ,
1: ना संत पावे ना लए मिटाए,
0: संत का दोखी अध बीच ते टूटे,
1: संत का दोखी

0: तब जबकि निराश न होके सोए,
1: जब अभिगत अगोचर प्रभ एका,
0: तब चिंतन गोचर घोषित लेखा,
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाध्य,
0: तब पौष छुपे और बंधन बांधे,
1: आपन आप ही अचर जा,
0: नाथ आपन रूप आप ही उपर जा,
1: जय निर्मल पूरक पूरक पथ होता,
0: जय बिन मैल का भेद होता,
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: जय कौन को
1: केवल जगदीश,
0: जय शाश्वत लोकेश,
1: जय ज्योत रूपी ज्योत सम समावे,
0: जय से उपम प्रतावे,
1: करण करावन कर निहार,
0: नान करते का नाश सुमार,
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई,
0: तब कम पाए बाप पितर सुख पाई,
1: जय सर्व कला आपे परवीन,
0: जय वेद रे मालिक जी,
1: जब आपन आप उतारे,
0: तो सदा सदा ठाकुर जय,
1: जय आपन ऊंच आपन आप नेरा,
0: जय कौन ठाकुर पवे ये जेरा,
1: विस्मन विषम रहे बिस्मान,
0: नानक अपनी गति जहां,
1: जय अच्छल अच्छेद अपेद समाया,
0: उमा

बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उद्रह द्वारका रिमानियह जौत सब सुख इत उत तुम वंशवह गुरु गुर गुरु जप प्राणियह।

0: तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई। अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण कर्ण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरण। अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण कर्ण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरण।
1: प्रताप सदा गुर का कट कट परगास पया जस जन कै इक पढ़े सुने गावे परभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी त्यान तरं। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विध वर्णं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरण। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विध वर्णं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरण।
2: जिनो बाद निश्...

0: चूझे अचंझे
1: अमीर के रफीके तंदे बंदे
0: बुझे सूझे अकाल है अजाल है
1: अल्लाह है अजाल है नंते मानते
0: अली खे निर्श्री खे निर्लंब है असंभ है
1: अगम है अजम है भूते शूते
0: अलोक है अशोक है अकर्म है

0: समस्तुर्पणस्य
1: अजञ्जुरे नाम्ने समस्तु विवासे
0: नितामन् विभूते समस्तु स्वरूपे
1: सुदर्पणासि
0: सदा सच्चिदानन्द सत्रङ्पणासि
1: हरिमूर्तिरिन्दा

श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाह दसमी कबीर बाज बेनती चौपी अमरी करो हाथे रक्षा पूर्ण होए।

0: भतीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया
1: सतगुरु का पाया सहज सेती मन बजिया वधाइया
0: राग रतन परवार परिया।

0: हरनाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना।
1: अंगीकारो करे तेरा कारण सब सवारना।
0: सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों।

0: पावे।
1: सदा सिख सलाह तेरी नाम मन वसावे।
0: नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे।
1: कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे।
0: साचा नाम मेरा आधारो।
1: साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया।
0: सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया।
1: सदा कुर्बान कीता गुर बिठो जिस दिया ए वडे आईया।
0: नानक सुनो संतो सबद करो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो।
1: वाजे पांच सबद तितकार सबागे कार सबागे सबद वाजे कल्ला जित करता रिया।
0: पांच दूत उद्वास गीते काल कंठ कुमारिया।
1: दुर्कर्म पाया तू जिनको सिर नाम हर के लागे।
0: कहे नानक कैस को तित कर आनंद वाजे।
1: साची लेवे बिन दे निमाणी लिवे पाजो क्या करे बेचारिया।
0: सम्राट को नाही कृपा कर बनवारिया।
1: केस नाउ होर थाव नाहे सबद लाख सवारिया।
0: कहे नानक लिवे बाजो क्या करे बेचारिया।
1: आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरते जानिया।
0: जानिया नाद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया।
1: कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾਉਣ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ।

अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरणा विच विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी की अपार कृपा बख्शिश हुई है दातार सतगुरा ने, अमृत वेले अपनी चरण शरण दे विच सानू सारिआं नू हाजरियां भरन दा सुभाग समां बख्शिश कीता है। सतगुरु साहब जी की अपार कृपा बख्शिश होई। सतगुरु साहब जी ने नितनेम अपने दर घर विखे नाम बाणी अभ्यास दे विच हाजरियां दा समां बख्शिश कीता, और अज मिती 29 तरीक नू शाम 8:30 बजे न्यू हाल दे विच अखंड कीर्तनी जथे वल्लों रैन सुबाई कीर्तन समागम होणगे, जो तकरीबन रात 8:30 बजे तो लैके सवेरे अमृत वेले तक चलणगे। आप समूह संगतां ने हाजरियां भरन की कृपालता करनी। कल दिन ऐतवार नूं सवेरे 3 बजे तो लैके 4:30 बजे तक श्री सुखमनी साहब दे जाप नाम सिमरन अभ्यास होणगे। आप जी ने जरूर हाजरियां भरन की कृपालता करनी जी। आओ हुण श्री आसा जी दे वार दे कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा,

चक्र चिह्न अर वर्ण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय